लाज बेचार। अपना जान मुझा प्रद परिया, चुन चुन सतर हमारे मरिया। देख तेग जग मैं दो चले, राखे आप मुह और नान दले। तुम मम कर हो सदा प्रत पारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा। जाने अपना मुझा निवाज, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा कर हो मुहे, हार परा मैं आन द्वार तुहे। अपना जान करो प्रत पारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। उदास जान दे हाथ बारो, हमरे सब बैरियन संगारो। प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बहुर करो कविता बिदनाना। कृष्ण जथा मात चरित्र उचारो, चूक होए काबले हो सुधारो। काब्यो बाच दोहरा, जो निज प्रभ मो सो कहा। सो कहे हों जग माहे, जो तेह प्रभ को त्याए हैं। अंत सुर्ग को जाहे दोहरा, हर हर जांदुई एक है। बिब विचार काश नाहे, जल ते उपजित रंग ज्यों। जल ही बिखै समाहे दोहरा, जब आए स प्रभ को भयो। जन्म तरा जागे आए, अब मैं कथा छिनछेप ते। सब हूं कैत सुनाए, कब बात दोहरा। ठाड़ पहयो मैं जोर कार, बचन कहा सर न्याए। पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को, नित उठते हैं संत। अंत लहेंगे मुक्त फालो, पावेंगे भगवंत दोहरा। कालपुर की देह मो, कोटक बिशन महेश। कोट इंद्र ब्रह्मा के ते, राव सास करोर जलेश दोहरा। राम

कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद बेबाद ग्रंथ सगल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमरत

दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरबिंद जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग जिसमें

ना ही साध संगत दी भगत जी का नाम लिखा है। सो एदा सरलेख जेड़ा पिछे तो चलदा आ रहा है ओही सरलेख रहेगा। राग भैरों दे विच भगत नामदेव जी की बाणी चल रही है, पर उथे साध संगत जी घर केड़ा चल रहा है, दूजा घर, फिर इथे आण के घर दी दूजे घर दी विशेषता दसी है, पर ए शब्द जेड़े सारे भगत नामदेव जी दे आउणगे। सो इथे अपने कोलों बाणी भगत नामदेव जी जां कुछ ऐसा शब्द नहीं उचारण करना। गरीब नवाज जिया ने दूजे घर दा सरलेख रख के शब्द अगला आरंभ हो रहा है। आप जी नूं इथों पता लगेगा जिवें साध संगत जी ए 28 पदियां दा शब्द है, 28 1 10 इस तों 28 तों भाव है 28 पदे ते एक शब्द हो गया घर दूजे दा। हुण दूजे कुल शब्द इथों तक 10 हो गए। सो इस करके जिन्ने भगत नामदेव जी दे आए हन हुण तक भगत बाणी दे विच उन्हां दी गिणती भगत नामदेव जी दी ते दूसरे भगतां दी वी जिहड़ी बाणी है पिछों जिथों भगत बाणी प्रारंभ होई उन्हां दी गिणती इत्थे 10 है। दूजे घर दा सरलेख दे के नवें शब्द दी अगे प्रारंभता हो रही है। सो इस तरह सरलेख जिवें दिता गया एवें ही पढ़ना जी।

0: बहुत विस्थार
1: रूपे की आकार
0: रूपे की आकारा बहुत विस्थार।
1: सात संगत जीओ सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी ने यह जो शब्द उचारण किया एक पंडित दे प्रथाए उचारण किया है। वह पंडित करतारपुर साहिब विखे सतगुरु जी के दर्शन करने वास्ते आया। सतगुरु जी के दर्शन किते सतगुरु जी कहन लगे कि भाई तेरे नाल फिर विचारा करांगे चर्चा तेरे नाल फिर होवेगी। पहला गुरु के लंगर दे विचों प्रशादा छक सतगुरु जी नूं दोने हाथ जोड़ के बेनती की कि सतगुरु जी ओ मैं आप प्रशादा तैयार करके छकदा हाँ तुहाडे लंगर दे विच उच्चियां नीवियां जातां वाले सारे इकट्ठे बैठ के छकदे ने इस करके मैं पंडित हाँ उच्ची जात दा ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁੱਕੀ ਰਸਤ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ

0: कर्म भाग गुर मेल मिलावै करे दात गुर सिख प्यारे दिन सरात फल नाम प्राप्त गुर तुस दे।
1: तुस पाठ कस के करना जिवें ज्ञानी जी ने उचारण।

0: एक तुका साहिब भावै सेवक सेवा करै जीवत मरै साब कुल उदरै तेरी भगत न छोड़ाओ क्या को हसै सात नाम मेरा हृदय वसै रहाओ जैसे माया मोह प्राणी गलत रहै।
1: गलत पाठ पोला करना गलत नहीं कहना, गलत दा अर्थ हुंदा है गलत, जिवें किसी चीज नूं कहा जांदा है कि ये गलत है, पर गलत दा अर्थ इत्थे है कि गलदा है। जैसे माया मोह प्राणी गलत रहे, गलत भाव गल जाना किसी चीज दा, जिवें लकड़ गल जांदी है पानी च रहण दे नाल, जिवें लोहा जंग लगण दे नाल गल जांदा है सड़ जांदा है, इत्थे ओह अर्थ बनदा है। जे गलत कहांगे कस के उच्चारण करांगे फिर अर्थ बदले।
0: तैसे संत जन राम नाम रवत रहै मैं मूर्ख मुग्ध ऊपर

बिन भगती नहीं सतगुर पाईऐ, बिन भागा नहीं भगत हरी, बिन भागा सतसंग न पाईऐ, कर्म मिलै हर नाम हरी, घट घट गुबत उपाय वेखै, प्रगट गुरमुख संत जना, हर हर करह सो हर रंग पीने, हर जल अमृत नाम मना, जिनका तख्त मिला वड्याई, गुरमुख से प्रधान किए, पारस भेट भए से पारस, नानक हार

जग जीवन स्यो आप चित लाए, मन तन हरिया सहज सुभाए, नानक नाम रहे लिव लाए। बसंत महला तीजा, भगत वच्छल हर वसै मान आए, गुर किरपा ते सहज सुभाए, भगत करे।

0: तोमन छे, तोमन बोल के छे संबंधक रूप च इकट्ठा पाठ है। तोमन अच्छे नहीं कहना, तोमन बोल के छे नाल लाउणा, तोमन छे। हर दीन दयाल करहो प्रभ कृपा, गुर सतगुर चरण हम बन छे। बन बोल के छे इकट्ठा ही पाठ है, बन छे। हां जी,
1: गोविंद जी ओ सतसंगल सतसंगत मेर कर कृप छे, जन्म जन्म के किल विख मल भरिया, मिल संगत कर प्रभ हन छे रहाओ। तुमरा जन जात अविजाता, हर जप्यो पतित पवीछे, हर कियो सगल पवन ते ऊपर, हर शोभा हर प्रभ दिन छे। जात अजात कोई प्रभ त्यावै, सब पूरे मानस तिन छे। से धन वड्डे वड पूरे हर जन, जिन हर धार्यो हर उरछे। हम ढींडे ढीम बहुत अत भारी, हर धार कृपा प्रभ मिलछे। जन नानक गुर पूरा पाया, हर तूठे हम किए पतित पवीछे। बसंत हिंडोल महल्ला चौथा, मेरा एक खिन मनुआ रह ना सके, नित हर हर नाम रस गीदे। ज्यो बारिक रसक परयो थन माता, थन काढे बिलल बिलीदे। गोविंद जीओ मेरे मन तन नाम हर बीदे, वड़े भाग गुर सतगुर पाया, विच काया नगर हर सीधे रहाओ। जन के सास सास है जेते, हर बिरह प्रभु हर बीदे। ज्यो जल कमल प्रीत अत भारी, बिन जल देखे सुख लीदे। जन जप्यो नाम निरंजन नर हर, उपदेश गुरु हर प्रीदे। जन्म जन्म की हम मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे। हमरे

पुण्य सत संगत गुर की हर प्यारी मिल संगत हर रस पुण्य रहो सत संगत साध दया कर मिलो शरणागत साधु पंज हम डुबदे पाथर काढ़ ले हो प्रभ तुम दीन दयाल दुख पंज हरि उस्तत धार हो हृदय अंतर स्वामी सत संगत मिल बुद्ध लंज हर नामे हम प्रीत लगानी हम हर विटो कुम वंज जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देव हर लंज जन नानक मन तन आनंद पया है गुरमंत्र दियो हर पंज।

0: फूल लगे फल रतन भांत तृप्त अघाने हर गुण है गाय जन नानक हर हर हर त्याय बसंत
1: महला। सिखां ने सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी दे पास बेनती की कि सतगुरु जी ओ जिहड़ी होली है ओहदा दिन है होली मना रहे ने लोग गुरसिखां नूं किस प्रकार होली मनाउणी चाहीदी है। सतगुरु जी ने शब्द दे विच बेअंतवार बड़े सुंदर बचन उचारण कीते ने कि होली कीनी संत सेव रंग लागा अत लाल देव सतगुर सेवाओ कर नमस्कार। उपर शुरू तो ही ये शब्द दे विच सतगुरु जी ने बड़े सुंदर बचन उचारण कीते ने जो इस प्रकार गुरमत दृढ़ करवाई है सतगुरु जी ने कि लोकां वांगू नहीं जिवें रंग पाउणा जां कई गंदगी भी उपर पाउंदे हन पर नहीं सतगुरु जी कहिंदे कि संत जनां दी सेवा करके परमात्मा दी बंदगी करके ही होली मनाई जांदी है। हाँ जी
0: बसंत

मेरे प्रीतम प्राण आधार मान जियो प्राण सब तेरो तान रहाओ। जाको खोज है सुर नर देव मुन जन सेख ना लह है पेव। जाकी गत मित कही ना जाए घट घट घट घट रह समाय। जाके भगत आनंद मै जाके भगत कौ ना ही खै जाके भगत कौ

साध की सेवा सदा सुहेली, जे लोड़ है सदा सुख पाई, साधु संगत गुरह बताई, ऊहा जपिए केवल नाम, साधु संगत पार ग्राम, सगल तत् मह तत् ज्ञान, सर्व ध्यान मह एक ध्यान, हर कीर्तन मह उत्तम तुना, नानक गुर मिल गाए गुना। बसंत महला पंजवा, जिस बोलत मुख पवित होए, जिस सिमरत निर्मल है सोए, जिस आराधे जम किछ न कहे, जिसकी सेवा सब किछ लहे, राम राम बोल राम राम, त्यागो मन के सगल काम, रहाओ जिसके तारे तरण आकाश, घट घट जिसका है प्रगास, जिस सिमरत पतित पुनीत होए, अंत काल फिर ना रोए, सगल धर्म में उत्तम धर्म, कर्म करतूत के ऊपर करम, जिसको चाह है सुर नर देव, संत सभा की लगो सेव, आद पुरख जिस किया दान, तिसको मिलिया हर निधान, किसकी गातमित कही ना जाए, नानक जान हर हर त्याय। बसंत महला पंजवा, मन तन भीतर लागी प्यास, गुर दयाल पूरी मेरी आस, किलविख काटे साध संग, नाम जप्यो हर नाम रंग, गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उरतारे, सदा सदा हर जस सुना, रहाओ समर्थ स्वामी कारण करण, मोहे अनाथ प्रभ तेरी शरण, जी जंत तेरे आधार, कर कृपा प्रभ लेहे निस्तार, भव खंडन दुख नास देव, सुर नर मुन जनता की सेव, तरण आकाश जाकी कला माहे, तेरा दिया सब जंत खाहे, अंतर

जय गोबिंद भगत सो धन देस हर भगत हीन उद्यान थान गुर प्रसाद घट घट पछान हर कीर्तन रस भोग रंग मन पाप करत तू सदा संग निकट बेग प्रभ करण हार ईत युद प्रभ कारज सार।

मात भरम भुलह भुलह गुर मिले हर पाए जिस मस्तक है लेखा मान रुत नाम रे गुण कहे नानक हर हरे हर हरे बसंत महला पंजवा घर दूजा हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद होए इकत्तर मिलहो मेरे भाई दुबदा दूर करहो लिव लाए हर नामै के होवह जोड़ी गुरमुख बैसहो सफा विसाए इन बिद पासा ढल हो बीर गुरमुख नाम जप हो दिन राती अंतकाल नह लागै पीर रहाओ कर्म धर्म तुम चौपड़ साजहो सत करहो तुम सारी काम क्रोध लोभ मोह जीतहो ऐसी खेल हर प्यारी उठ इसनान करहो प्रभाते सोए हर आराधे बिखड़े दाव लंघावै मेरा सतगुर सुख सहज सेती घर जाते हर आपे खेलै आपे देखै हर आपे रचन

मान चंचल या ते गहु न जाय रहाउ जोगी जंगम अर संन्यास सब ही पर डारी इह फास जेह जेह हर को नाम।

0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਏ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਲਗਵਾਇਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੇਨ ਦੱਸ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਰਦਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਜਾ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਭੇਟਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਠੰਡ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਗ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਕਰੋ ਉਹਦੀ। ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਐਵੇਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਧ
1: 1550 KRPI ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਵ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਸਰੀ।
2: ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ ਫਰਨਡੇਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ।
3: ਅਕਾਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਕਿਧਰੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਤ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇਕਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਜੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ। ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਬ ਅੰਗ ਹੈ, ਸਵੈਮ ਭੂ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਔਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਜਨਾ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਭੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ज्ञान भी ईश्वर तो है, परमात्मा तो है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते ने, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। आदि गुरु वेदा ने भी परमात्मा नो ही मने है, वो ही गुरु है। अगर मोहम्मद साहब कहते ने ये आयतां मेरे ते नाजल हुई ने, मैंने उच्चारण कीतिया, खुदा दी तरफों नाजल हुई ने, तो इहदा मतलब ये ज्ञान खुदा ने दिता, फिर थोड़ा ते ना होया, क्योंकि नाजल जो हुई अगर नाजल हुई ने तो फिर ये ज्ञान मोहम्मद साहब का नहीं है, ये तो खुदा का हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते ने, बोल मेरे नहीं ने, जैसे मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। जैसे खसम दे बोल आए ने, मैं कह रहा, जैसे जैसे खसम की बाणी आई है, मैं जगत दे सामने रख रहा, मेरे नहीं ने। जे बोल सारे खसम देन तो ज्ञान सारा परमात्मा का, ईश्वर का है। और जे ज्ञान परमात्मा तो आ रहा है तो फिर परमात्मा गुरु है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, हां मेरा गुरु मेरा परमात्मा ही है। अपरम पर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुरु मिलिया सोई जियो, यही मेरा गुरु है। इसे तो ही मैं ज्ञान लिया। कंधार दे एक सूफी संत ने गुरु नानक ते प्रश्न किया है, रहनुमाए तो कीस्त, थोड़ा रहबर कौन है, इतना ज्ञान तुसी कितों ले, किस कोल पढ़े है, किसने सिखाया है। रहनुमाए तो कीस्त, थोड़ा रहबर कौन है। तो सतगुरु एकदम कहते ने, खुदाए मन, मेरा रहबर मेरा खुदा है और कोई भी नहीं, मेरा मुर्शद मेरा खुदा है और कोई भी नहीं, मेरा गुरु मेरा खुदा है और कोई भी नहीं। जन्म साखी दे बोलने, रहनुमाए तो कीस। कंधारी सूफी संत, कंधार देच एक बहुत वड्डा मकबरा है इस सूफी फकीर का, गुरु नानक देव जी महाराज सऊदी अरब इराक दी यात्रा दे समय इसे कंधार तो लंघ दे इसे सूफी फकीर दे मेहमान रहे ने 15 दिन। इसने प्रश्न कीता है, रहनुमाए तो कीस, थोड़ा रहबर कौन है थोड़ा गुरु। खुदाए मन, जैसे छोटे शब्दां च थोड़े बोलां च उस फकीर ने प्रश्न कीता है, थोड़े ही बोलां च सतगुरु जवाब पे देंगे। रहनुमाए तो कीस, खुदाए मन, मेरा खुदा ही मेरा रहबर और कोई रहबर नहीं, मैं सारा ज्ञान खुदा तो ले है। असी पैगंबर गुरु अवतार उनानों कहंदे आ जो परमात्मा दे ए बोल सिद्धे पकड़ लैन, सिद्धे ही पकड़ लैन, उनां दी पकड़ दे सिद्धे आ जांदे। ते जो अवतारां ते गुरुआं दे राही पकड़ के परमात्मा तक पहुंचन, असी उनां नूं भगत कहंदे आ। ए भगत ने, इन्हां ने अवतारां दी बाणी सुन के, अवतारां कोलो उपदेश लेके, पैगंबरां कोलो शिक्षा लेके, उन्हां दे बोलां नूं जीवन दा आधार बना के परमात्मा दी प्राप्ति की थी भगत। इस सिद्धे परमात्मा दे बोल नहीं पकड़ सके, जिन्हां ने पकड़े सन उन्हां नाल जुड़ के उन्हां नूं मन के ये पार उतरे। जो इस तरह सफलता नूं प्राप्त होया सी उन्हां नूं कहने हैं भगत। इतनी श्रद्धा सी, इतना विश्वास सी, अवतार दे हर बोल दे उते भरोसा कीता, पैगंबर दी हर शिक्षा दे उते विश्वास कीता, गुरु दे हर बोल दे उते भरोसा कीता। और उस भरोसे ने उना बोलां दे सदके पुचा दिता भगत। पर ए बोल सिद्धे जिन्हां दी पकड़ दे चा गए खला दे च, और ये बोल हर वक्त मौजूद ने। मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, ठाकर हमरा सद बोलन था, हर वक्त परमात्मा तो ये बोल आ रहे हैं हर वक्त। गुरु नानक दी पकड़ दे च आ गए, कृष्ण दी पकड़ दे च आ गए और महाभारत दे मैदान जंग दे च। ये जो गीता है ये ज्ञान कुरुक्षेत्र दे च जंग दे च निकले है। अर्जुन दे प्रश्न और कृष्ण दे बोल, उन्हां बोलां नूं कहिंदे ने भगवान दे बोल, परमात्मा दे बोल, ते परमात्मा अमिट है। इत्थे कह दे कृष्ण अमिट है, शरीर ते सुपना सी रुखसत हो गया, वो बोल अमिट ने। वाकई गीता अमिट है क्योंकि बोल ते परमात्मा दे ने, ईश्वर दे ने। कृष्ण आए चले गए, और वो जो भगवान शब्द का उच्चारण कर रहे सन भुलेखा पै गया अगे चल के, ये भगवान दे बोल ने, भगवान कह रहे हैं। मैं शब्द जोड़े ऋषि वेद व्यास ने, क्योंकि गीता लिखती रूप देच उन्होंने जगत दे सामने रखी, श्री कृष्ण ने स्वयं नहीं रखी। बस इतों थोड़ा जहा मुगलता पै गया। परमात्मा दे बोल कृष्ण जी ने पकड़े, ते कृष्ण दे इना बोलां नूं लिखती रूप देंदे ने व्यास। तो थोड़ी अपनी रंगण चाड़ गए, कुदरती गल है अपनी रंगण चाड़ जाणगे। आपदी ग्यात लई अर्ज करा, एक कवि एक कविता बयान करे ते हुण कोई उस दे अर्थ करन लगे तो कुछ ना कुछ अपना रंग चाड़ जाएगा, कविता दे अर्थ भी कर जाएगा और कविता नूं कुछ अपने रंग भी दे जाएगा। लाजमी हू बहु वो नहीं हो सकती, ये भी मैं अर्ज कर दी। एक आम साधारण कवि दी कविता दी हू बहु उसे ढंग नाल व्याख्या नहीं हो सकती। तो कृष्ण ने जिहड़े बोल बोले अर्जन नूं समझाया हू बहु किस तरह लिख सकते सन व्यास, तो कुछ अपनी रंगत चाड़ गए ने। जिथे जिथे उन्होंने अपनी रंगण चाड़ी है उथे उथे एकदम गल प्रगट हो जाती है, नहीं कृष्ण इस तरह नहीं कह सकते। वक्त दा अवतारी पुरुष, महान ज्ञाता, और जिसनों मैदान जंग देच भी कहण की जरूरत है, ए अर्जन तू एक निमित्त है, तू करता नहीं है। तू जो ये कहना है ये मेरा गुरु ये मेरे भरा इन्हां नूं मार के मैं की खटना है, तू निमित्त है, तू कौन है मारन वाला, तू नहीं मार सकता। तू स्वभाव दा क्षत्री है, सूरवीर है, और नहीं लड़ेगा तां भी तेरे दिल दिमाग दे ते ऐसा बोझ रहेगा, तेरे अंदर लड़ाई जारी रहेगी, ये करना ही पड़ेगा। तू करता नहीं है, निमित्त है, पर अपना कर्तापन एक पासे कर दे, इस जंग देच भी तू परमात्मा नाल जुड़ जाएगा, युद्ध भी तेनू समाधि लीन कर देगा। अगर तेरा कर्तापन तेरे नाल है तो तेरा त्याग भी तेनू परमात्मा नाल नहीं जुड़न देगा, तेरा त्याग भी तेनू ईश्वर नाल नहीं जुड़न देगा, क्योंकि तेरा कर्तापन मौजूद होवेगा उत्थे। ये गहरी गल अर्जन दी पकड़ देच आ गई, उन्हें सुट्टे शस्त्र फिर चुक लए, प्रभु मैं समझ गया, भगवान मेरी समझ दिच आ गई, मैं पकड़ लिया थोड़े बोलां। जो परमात्मा दे बोलां नूं सीधा पकड़े अवतार, तो जो परमात्मा दे बोल अवतारां दे राही पकड़ सके भगत, श्रद्धालु, संत, भगत। अवतार जिस मात्रा दे जगत दे चाहुंदे ने उंगलियां ते गिण सकदे आ, भगत बहुत ने। हर कौम दे चोटी दे भगत काफी तादाद दे चोए ने। अवतार हर वक्त पृथ्वी ते मौजूद नहीं आउंदा, भगत हर वक्त आउंदे ने। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राज। जमीन दे ते हर वक्त अवतार नहीं आउंदे, अवतार उस समय आउंदे ने, कवि तुलसी कहिंदे ने, जब जब होए धर्म की हानि, बाहणे असुर अधम अभमाने, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, हरे कृपा निद सज्जन पीरा। बहुत घोर अपराध पाप छा जाए तो ओ जैसे बहुती गर्मी बारिश नु जन्म दे देंदी है, इस तरह का घोर पाप किसी अवतार नू जन्म दे दे। परमात्मा दे सिद्धे बोल पकड़दा है ते जगत नू सुणदा है। और मैं ये भी अर्ज कर दिया किथे जगत अवतारा दे बोल नू पकड़दा है पूरा थोड़े जिहा फिर भी पकड़दे नू दे नाल रोशनी हो जाती उसने नाल काफी ठरम्मा हो जाता है। कलगीधर पिता भी इस तरह लिखते ने जब जब होए अरिष्ट अपारा दसम ग्रंथ जब जब होए अरिष्ट अपारा तब तब दे धरत अवतारा। उस वक्त कोई अवतार दे ही धारण करता है जब सारी सृष्टि देच अरिष्ट होवे भाव गलत होवे कुछ भी सही ना होवे ता फिर कोई ऐसा अवतार जो सीधा अकाल पुरख दे बचना नु पकड़ता है और जगत दे सामने रखता है। अवतारा दे राही गुरुआ दे राही जिन्हों की पकड़ दे चाह जाते हैं वह भगत वो गुरमुख वो ब्रह्म ज्ञानी। तो चूंकि बोल ते परमात्मा दे ने ज्ञान ते सारा परमात्मा दा है तो गुरु नानक कहिंदे ने परमात्मा ही गुरु है और कोई गुरु नहीं ईश्वर ही गुरु है वो जो एक है वो ही गुरु है। अखीर विच इस मूल मंत्र नु जिस ढंग नाल समाप्त कर देने धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने प्रसाद है गुर प्रसाद प्रसाद और गुर ये दो मजमून अपने आप विच इस तरह दे ने थोड़ा जिहा मैं इन्हां नू खोलना चाहना ताकि ज़हन विच ये गल पूरी बैठ जाए। पता नहीं कितना सिख जगत भटक रहा है देहदारी गुरु चाहिदा है कि नहीं कौन दसे कदी देही भी गुरु आउंदी है अज है ते कल नहीं इहदा मतलब गुरु मिट जांदा है गुरु मर जांदा है ते जो मर जांदा है ओ गुरु सदीवी जीवन थानू किस तरह देवेगा किस तरह देवेगा। गुरु ते शब्द है गुरु ते ज्ञान है ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। किसे देही कोल भी जाओगे तो वो जो उपदेश कर रही है उपदेश नू हिरदे च वसाओगे कि उस देही नू जे आखो देही नू हिरदे च वसाना है तो उपदेश सुनन दी लोड़ ही नहीं की लोड़ है। ते जे उपदेश नू हिरदे च वसाना है ते तां ही हिरदा बदलेगा तां ते फिर देही दी कोई कीमत ही ना रहेगी। देही दा उतना ही सन्मान जिवें किसी ने कोई कपड़े पहने अवन ते कपड़ियां दी कदर कपड़ियां दा सन्मान भाई फलाने दे कपड़े ने फलाने दे वस्त्र ने जिवें रुमालियां दा असी सत्कार करदे आं गुरु ग्रंथ साहिब दे रुमाले ने। पर हुण मैं अर्ज करां कि अखर ए वी रुमाले ने कागज ए वी रुमाले ने अखरां दे च जो ज्ञान है यही परमात्मा ओरे दे चों गुरु नूं कढ़णा पैंदा मक्खण शाह लवाणा बनना पैंदा गुरु ते हर वक्त बोले च ये भी मैं अर्ज करते बाई दे दारी गुरु बार बैठे सन ते हजारा लोग भुल जाते सन उन्हां नूं मत्था टेक के वापस हो जाते सन तसली नहीं आउंदी सी किसे दी। मक्खण शाह लवाणा आया इहदे कोल अक सी कहिंदा है रब दा कलाम अकाल पुरख दे बोल ते मैनूं किसे कोल नहीं दिखाई दित्ते। तो चलो ये साधक होणगे संत होणगे ये अवतार नहीं ने ये नहीं ने ये गुरु नहीं ने। चलो अभ्यासी होणगे गुरु होण दा दावा इन्हां दा झूठा है। तो चूंकि ये दावा झूठा है तो शायद इन्हां दी बंदगी भी झूठी है। जो इस तरह के झूठे दावे करन किस तरह सच्चे हो सकदे मक्खण शाह लबाणे दी सोच नहीं। बकाले देच एक हलवाई तो पुछदा इत्थे कोई होर भी है जो गुरु नानक दी गद्दी दा वारस होवे। उस हलवाई ने कहा सोडी बंश दा एक तेगा कमला है गुरु प्रताप सूरज दे जिस तरह लिखे है एक तेगा कमला है भोरे च रहिंदा है भोरे देच है बाहर नहीं आउंदा। वो जिहड़े बाई सन लिशके पुशके बाहर बैठे सन गदियां ला के ये भौरे च गया दर्शन कीते ने बोल सुने ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਲਾ ਧੋਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਭੌਰੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਚ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਣ ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਚ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਬਸਾਓ ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਓ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਜੈਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗਾ ਬਾਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਜੋ ਦੀ ਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਵਿੰਦ ਅਨੂਪ ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਇਧਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਧਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਇਧਰ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਬੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣੇਗਾ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਖ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਣ ਪਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੂੜ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੱਲ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਿਯਮ ਪੂਰਵਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਦਿਹਾਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਗਾਲ ਬੜੀ ਗਾਲ ਨਾ ਗਾਲਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਸਮਾ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ तेरा कोई मुल नहीं है, मेरा कोई भी कर्म तेरा मुल नहीं है, मेरा अमृत वेले दा उठना तेरा मुल नहीं है, मेरा वाहेगुरु वाहेगुरु दा जप करना तेरा मुल नहीं है, तीर्थां दा इशनान दान पुन सेवा ये तेरा मुल नहीं है, राम राम दा रटन ये तेरी कीमत नहीं है। तू मिले है मेरी मेहनत नहीं तेरी रहमत, तू मिले है मेरा प्रयास नहीं तेरा प्रसाद। पर जद मिले है प्रसाद ही है, जद मिले है उदी रहमत ही है, तो मेहनत करन दी की लोड़ है। यकीन जानो मेहनत कर करके ही पता चलता है, नहीं पता चलता, मेहनत कर करके इतना ही पता चलता है कि मेहनत नाल नहीं मिलेगा। गुरु नानक इसनों इस तरह कहने ने, गाल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आए अचिंता मल्ला पहला। गुरु नानक दी बाणी, गाल नाल नाल नहीं मिलिया, सेवा नाल नहीं मिलिया, दान नाल नहीं मिलिया, पुन नाल नहीं मिलिया, कोई दान करोड़ां दा उसकी कीमत नहीं, कितनी सेवा जीवन भर दी उसकी कीमत नहीं, कितना जप जिंदगी भर दा उसकी कीमत नहीं, नहीं मिलता। ना कीते जप नाल मिलदा, ना दिते दान नाल मिलदा, ना कीती सेवा नाल मिलदा। फिर किस तरह मिलता है? वो मिलता है अचनचेत। गाल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आए अचिंता, अचनचेत मिले। तो अचनचेत किस तरह मिल गया? उदा प्रसाद, उदी बख्शिश, उदी रहमत, मेहनत नहीं उदी रहमत। आया ये रहमत आखिर होंदी होवेगी, कोई ढंग ते है, कोई तौर तरीका ते है। इन्हां गुंजलां नूं गुरबाणी ने जिस ढंग नाल खोले है, मैं कल आप जी दे सामने रखण दी कोशिश करांगा। और समय नूं मुख रखदे होया इंज कह लो कल समाप्ति कर देंगे। उंज ए मूल मंत्र धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी सारी बाणी मूल मंत्र दी व्याख्या है। दुनिया दे सारे धर्म ग्रंथ इंज कह लो मूल मंत्र दा टीका ने, और कुछ नहीं। ईश्वर दे सारे बुनियादी गुण मूल मंत्र दे आ गए ने। वो एक है, वो ओंकार है, उसतों उत्पत्ति पालना नास हो रहे, वो एक सत है, वो जो एक है उसका नाम है, उसे दा ही नाम है, अमिट है, बाकी किसे दा नाम है? सब नाम मिट जाते हैं, समा पा के मिट जाते हैं। वो जो एक है वो ही करता है, और जो एक है अपनी कृत दे च बैठा है, अपनी कृत तो वक नहीं है। वो जो एक है उसके स्वभाव दे च भय नहीं है, उसके स्वभाव दे च वैर नहीं है, उसकी होंद दे च काल नहीं है, समा नहीं है, वक्त नहीं है। वो जो एक है बकायदा मूर्तिमान है, और वो जो एक है उसनु किसी ने बनाया नहीं, अजो नहीं है। वो जो एक है सैभंग है, अपने आप तो आप ही विस्तृत होया है, अपना पसारा उसने आप ही कीता है, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचे हो ना। वो जो एक है वही गुरु है, वो जो एक है वही प्रसाद। इस सारी व्याख्या उस एक दी, फिर सारे गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी उस एक दी व्याख्या, दुनिया दे सारे धर्म ग्रंथ उस दी व्याख्या, जेडे मूल गुण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मूल मंत्र दे च बयान कीते ने, गुर प्रसाद, इसका थोड़ा जहा खुलासा कल आप जी दे सामने रख के इस दौर दे जो आप जी नाल संजोग बनिया दो हफ्तिया का कल जो है समाप्ति करांगे। रोज आप समा कटते रहे सतगुर रहमत करन कि गुरुद्वारे आन का ख्याल रोज आवे। थोन मैं इतना अर्ज कर दिया, जिमें आदमी पुत्रां कोल बैठता है, मित्रां कोल बैठता है, पत्नी कोल बैठता है, पति कोल पत्नी बैठती है, भरा कोल भरा बैठता है, जैसे मित्रां कोल बैठते हैं, इसी तरीके नाल गुरु कोल आके बैठना चाहिए। और थोड़ा जहा मैं अपने अनुभव के आधार पर कह दिया, नहीं कीर्तन हो रहा ता भी ना सी, बैठना भी लाभकारी, इतना भाव होवे कि असी गुरु नानक दे कोल बैठे।

और वह प्रसाद है उस देच क्रोपी नहीं है, उस देच सराप नहीं है, वह जालम नहीं है, रहमान है, रहीम है, वो करीम है, वो प्रसाद है, वो बख्शिंद है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो कठोर नहीं है। खुदा ऐसियां सजावां देंदा है, ऐसियां करणियां सजावां, जिथे जिथे जो कुछ भी लिखे है यकीन जानो गलत लिखे है, गुस्ताखी माफ। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं। ये भी मैं अर्ज कर दें, ना जगत किसी नूं कोई सजा देंदा है, ना परमात्मा, साढ़े अपने लक्षण ही सानू सजा दे देंगे, साड़ी अपनी करनी ही सानू सजा दे देंगे, असी अपने कीते करके ही जो है दुख पा लेंगे। परमात्मा दुख देने वाला नहीं है, अगर दुख देने वाला है तो फिर उन्हें रहीम कहने की लोड़ नहीं है, उन्हें करीम कहने की लोड़ नहीं है, उन्हें रहमान कहने की लोड़ नहीं है, उन्हें प्रसाद कहने की लोड़ नहीं है, उन्हें कृपालु ते दयालु कहने की लोड़ नहीं है। वो ते इतना दयालु ते कृपालु है, इतना प्रसाद है। ईरानी सूफी संत हाफिज कहते ने, सद सालाबा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद, ऐ खुदा 80 साल की उम्र च इसने ये बोल रचे ने। कहिंदा तू मैनू 100 साल तक जे जिंदा रह रखिया, 80 साल का तो मैं हो गया, 80 साल तक मैं गुनाह ही कीते ने, जे बाकी होर तू मैनू 20 साल की जिंदगी दिती ना तो मैं गुनाह करांगा, पुन नहीं करने, पाप करने। सद सालाबा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम कर द, एक फकीर दे मुंह ये बोल चंगे नहीं लगते, पर फकीर बड़े निराली बिरती दा फकीर से। ईरान दे जितने फकीर हुए ने उन्हां दे च एक चोटी दा फकीर है। उंज उस धरती ने बहुते फकीर पैदा कीते, शेख सादी सी, उमर ख्याम सी, फिरदौसी उत्थे ही होया, हाफिज जो है उत्थे होया, शेख सादी उत्थे ही होए ने, शमस तबरेज उत्थों ही आए सन, सरमद भी उत्थों ही आया सी। इस तरह दे बहुत सारे चोटी दे सूफी संत उस जमीन ने पैदा कीते, उन्हां दे चविक ए है हाफिज। जिस तरह हिंदुस्तान दी मिट्टी ने ऋषि पैदा कीते, मुनि पैदा कीते, ज्ञानी पैदा कीते, भगत पैदा कीते, संत पैदा कीते, अवतार पैदा कीते, ईरान दी मिट्टी ने कुछ फकीर पैदा कीते, सूफी संत पैदा कीते। उन्हां दे हाफिज दा अपना एक खास नाम है, कहिंदा सद सालाबा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद, ऐ खुदा जिस 100 साल तक मैं जिंदा रहा, पिछली जिंदगी ते मेरी गुनाहां च बतीत होई है, अगे होर भी गुनाह करांगा, 100 साल तक करांगा, अगर तू 100 साल दी मैनू जिंदगी दिती, क्यों ऐ खुदा तू ते मेरे कदम कदम ते इम्तिहान लेना, मैं फिर तेरा इम्तिहान लेना है। कि ता जुर्म मन अस्त बेश या रहमत तो, मैं एक पलड़े देच रखांगा अपने 100 साल दे गुनाह, तोलांगा एक पलड़े च रखांगा 100 साल दे गुनाह, और दूजे पलड़े दे च रखांगा तेरी एक पल दी रहमत, एक पल दी बख्शिश, एक पल दी कृपा। कहिंदा मेरा अनुभव कह रहे है तेरी एक पल दी रहमत इतनी ज्यादा है कि मेरे 100 साल दे गुनाह ते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एवें मैं हिरदा बोझल पे कर दू, कुछ भी नहीं। कृष्मा रहमते शाहां का जब देखा हशर ने, चीख उठा हर बेगुनाह मैं भी गुनाहगारों में हूं। तू इतना बख्शन, इतना दयालु, ये फकीर कहंदा मेरे अनुभव च आ गई ये गल, बाकी दे 20 साल मैं रहा ते पाप करांगा, पर मैं अर्ज करा जिस दे उते इतनी रहमत हो गई है, ते जिसनु इतनी रहमत दिखाई दे रही है, क्यों पाप करेगा, उस तो क्यों पाप हो जाएंगे। इसनु इंज भी लेना, किधरे इंज ना लेना भी, चलो बड़ा कृपालू है, कल तो सारे ही अनर्थ कर दे, किधरे इंज पुठी गल ना ले लेना, सिलसिला उल्ट ना ले लेना। ए फकीर कहिंदा सद सालाबा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद, ऐ खुदा

माता तृप्ता जी ने आप नूं प्रेरिया कि हुण तुसी कुटुंब वाले हो, परिवार वाले हो, थोड़े बच्चे हैगन, थोड़ी पत्नी भी हैगी और परिवार विच रहना भी थोड़ा धर्म है, मुख धर्म है। तां उस वक्त गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी माता प्रति जो बचन उचारण कीते ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच बकायदा दर्ज ने, आपने फरमान कीता, माता मैं जिधर भी जाना अपना परिवार नाल लैके जाना और मैं कदी परिवार तो बिछड़िया ही नहीं, परिवार मेरे नाल हुंदा जिस पासे भी मैं जावां। तृप्ता जी हैरान हो गई कि परिवार नाल जांदा, असी सारे इत्थे ही आउंदे, कोई नाल गया नहीं, मरदाने ते बाले तो बिना परिवार दा कोई फर्द नाल नहीं, पर नानक जी कह रहे ने परिवार मेरे नाल है और मैं जिधर जाना परिवार मेरे नाल जांदा है। ये ते सुदाइयां वाली गल होई। अक्सर संसार दी दृष्टि विच भगत लोग महापुरुष पागल ही कहलाए गए, उन्हां नूं पागल ही आख्या गया। कारण उन्हां दे विचार, उन्हां दे बोल समाज दा हिस्सा नहीं बनते सन, व्यवहार दा हिस्सा नहीं बनते सन। रोज़मर्रा दी जिंदगी विच उन्हां दे विचारां नूं, उन्हां दे व्यवहार नूं, उन्हां दे बचनां नूं ढालना बड़ी औखी गल हो गई। जिस तरह पागल दे बोल संसार नाल तालमेल नहीं खांदे, समाज दा हिस्सा नहीं बनते, भगतां दे बोल भी समाज दा हिस्सा नहीं बनते। इस वास्ते जिथे पागल समाज नालों टुट जांदा, करीबन करीबन भगत भी समाज नालों टुट जांदे। अज तक दा इतिहास यही कहिंदा है। और गुरु नानक दी बाणी ने तो साफ फैसला कुन गल कह दिती है कि भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, भगत ते संसारी दा जोड़ कदी जुड़िया ही नहीं, मेल कदी होया ही नहीं। जद गुरु नानक देव जी महाराज ने यह आख्या कि परिवार मेरे नाल जांदा है और मैं जिधर जाना परिवार अंग संग है, तो तृप्ता जी हस पईआं, आखन लगे नानक जी तुसी वाकई सुदाइयां दी तरह गल करन लगे। जगत ते सुदाई कहिंदा ही सी भई तू सुदाई है, अज मैनू भी कहना पएगा ये बोल सुदाइयां वाले ने, पागलां वाले ने, परिवार ते सारा इत्थे ही हुंदा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे, मां ये ते सोचण सोचण दी गल है, ये ते मनुख दे मनण मनण दी गल है, मैं जो कह रहा बिल्कुल सही कह रहा, मैं जिधर जाना मेरा परिवार मेरे नाल जांदा। तो गुरु नानक देव जी महाराज की माता जी ने पूछ लिया, ये दस जिहड़ा परिवार नाल जांदा है उहदे च मां है पिता है? साहिब कहण लगे, हाँ जिहड़ा परिवार मेरे नाल जांदा है उहदे च मां भी है। तो हुण ते हैरान होईआं ते खिड़खिड़ा के हस भी पईआं, पुत्र तू वाकई सुदाइयां वाली गल करदा है, वाकई पगलियां वाली गल करदा है, मैं ते कदी नाल नहीं गई, मैं ते इत्थे तलवंडी दे च ही रही हां, पर तू कहना मेरे नाल है मां। फिर सोची पै के कहिंदियां ने, किधरे ऐसा ते नहीं तू मेरी याद नाल लै जाना है, ते यही आखना चाहुंदा होवें ते मैं समझदी ना होवां। साहिब कहण लगे, हां कहना ते कुछ मैं ऐसा चाहना मां, अजे भी तू नहीं समझी। कहिंदे ने भगतां तो ब्रह्म ज्ञानियां तो चार तरह के जड़े मनुख ने वो कोई लाभ नहीं उठाते, एक ते मां बाप, दूसरे शरीक, तीसरे जिगरी दोस्त और चौथे दुश्मन, ये कोई लाभ नहीं उठाते, ये उन्हां दी गल नूं समझना भी नहीं चाहते और उन्हां तो लाभ भी नहीं उठाना चाहते। तो ममता दी मारी हुई तृप्ता ममता दी दृष्टि नाल गुरु नानक नूं वेखदी है और गुरु नानक इस दुनिया तो बहुत उच्चे अगां दी गल कर रहे हैं, मां मैं जिधर जाना परिवार मेरे नाल आउंदा। क्या उस परिवार विच मां भी है? हां मां भी है। तो तृप्ता जी ने पूछ लिया, नानक जी दसो उस मां दा नां की है जो नाल जांदी है? तो सतगुर माता दा नाम दसते हैं, परिवार दे सारे फरदां दा नाम दसते हैं और ये शब्द

और जिसनो अपना मन पढ़न दी जाच आ जाए साधक, और जो अपने मन नो बदल देवे शुद्ध कर लेवे साधु, जो साधना दे लीन है मन नो समझण दी कोशिश पिया करदा है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी ते इत्थे तक कहिंदी है गुरु अर्जन देव जी महाराज, ब्रह्मा बिशन नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। धार्मिक दुनिया दे ए अजीम देवते बड़े दार्शनिक सन, बड़े सियाने सन, बड़िया शक्तियां दे मालक, पर जिस धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु आप मत्था टेक रहे हो, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। वो भी मन दियां गहराइयां नु समझ ना सके ते मन दे हथों ठगा गया, ब्रह्मा ठगा गया। किस तरह ठगा गया? अपनी बच्ची दा रूप वेख के ही अपना मन मैला कर बैठा। पुराण कथावां जिसका अनुवाद करते ने भाई साहब भाई गुरुदास जी, चारे वेद वखाण दा चतरमुखी होए खरा सियाणा, लोकां नू समझाएंदा वेख सुरस्ती रूप लुभाणा। ब्रह्मा जिहड़ी भुल ब्रह्मा करदा है ओही भुल विष्णु करदा है, ओही भुल शंकर करदा है, ओही भुल इंद्र करदा है, ओही भुल नारद करदा है। कारण क्यों करदा है? मन दियां गहराइयां नू समझण दे असमर्थ रह गए। ते मन नू समझना किधरे बच्चियां दी खेड ना समझ लैणी। लोकी कहिंदे ना मन नू शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, मन नू शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किस तरह कर लेणगे, किवें कर लेणगे? जिन्हां नू मन दी बिल्कुल समझ नहीं इंज कहिंदे ने मन नू एकाग्र करके पाठ करो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और वो कह रहे हैं जिन्हां नू मन दी समझ नहीं, इंज कहना चाहिए है पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे। मन दी एकाग्रता ते फल है। जिहड़े कहिंदे मन नू एकाग्र करके कीर्तन करो, मन नू एकाग्र करके कीर्तन सुनो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और मैं फिर अर्ज करा उही कह रहे हैं जिन्हां नू मन दी बिल्कुल समझ नहीं, कोई बोध नहीं। ओही कहिंदे ने मन नू एकाग्र करके कीर्तन सुनो, नहीं इंज कहना चाहिए कीर्तन सुनो ताकि मन एकाग्र होवे, पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। मन नू शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बच्चियां दी खेल। और गल स्पष्ट हो गई, मन दी समझ नहीं, मन दा कोई पता नहीं। आम साधारण मनुखां दा ते कहना की धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। आम बंदे मन दे हथों ठगाए जांदे ने, ब्रह्मा भी ठगा गया। किसे होर ने नहीं ठगया, मन ने ठग लिया बिशनु नो, मन ने ठग लिया शिव जी नो, मन ने ठग लिया इंद्र नो। जो आम साधारण मनुख भूल करते ने इंद्र भी कर बैठा है। और हैरानगी कि गौतम ऋषि दी नार अहिल्या अपने विचार अपने जज्बात नु काबू ना पांदा होया एक संत दी पत्नी नु भ्रष्ट करदा है। इंद्र गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा फैसला, गुरु ग्रंथ साहब जी इस इतिहास नु साडे सामने रखदे ने। गौतम नार अहिल्या तिस देख इंद्र लुभाया, सहस शरीर चहन भग उवै तामन पछोताया। तो मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच की है, मनुख दी सोचनी विच की है, मनुख दे चिंतन विच यादां विच की है, मनुख दे विचारां विच काम है, मनुख दे विचारां विच लोभ है, मनुख दे विचारां विच अहंकार है। मैं दोवां दा नां नहीं लिया, क्रोध ते मोह। पता है क्यों? धार्मिक दार्शनिक कहिंदे ने ये जो तीन ने काम लोभ अहंकार इन्हों की अपनी बुनियाद है। क्रोध ते मोह इन्हों तिना की छाया है, क्रोध ते मोह की अपनी कोई बुनियाद नहीं है, इसकी अपनी कोई होंद नहीं है। ये उन्हों तिना की छाया है, काम की छाया है मोह, लोभ की छाया है मोह, हंकार की छाया है मोह। हंकार की छाया है क्रोध, मोह की छाया है क्रोध, काम की छाया है क्रोध,

आखो सतनाम श्री वाहिगुरु सानू विश्वास आ जाए भरोसा आ जाए। एक नलका इत्थे भी लगा है, एक नलका बाबा तुलसीदास जी दे हत्थां दा दौले आल भी लगा है। संगत शायद हरियाणे तो आए ने गुरमुख प्यारे, गल अंदर विश्वास दी है, भावना दी है। जदों विश्वास रख के चलो वह सब कुछ वरतद है। एक दिन वे सैकड़े केस सचखंड श्री हरिमंदर साहब दरबार साहब वरतते ने। जिदन कोई विश्वास नाल गुरु के दर ते आउंदा ये गल सच है कि कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन पै अरोगा कोट बिगन लाथे प्रभ शरणा प्रगटे भले संजोग। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे चरणा विच लाहौर तो वजीर आ गया है। इतिहास कहिंदा उह वजीर खान ने उहनूं साईं मियां मीर जी ने कल्लिया। उह आके गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं जिथे बाबा बुढ़ा साहिब दी वेर है पातशाह उत्थे बह के हरिमंदर साहिब दी सेवा करवा रहे सी, हथ जोड़ के आके कहिंदा जी मैनूं इक रोग है, मेरा भला कर दिओ, मैनूं साईं मियां मीर जी ने कल्लिया। पातशाह ने बड़ा अदब किया, क्यों साईं मियां मीर जी ने कल्लिया? किसे अफसर दे कोल इक उहदे अफसर दूजा कोई बंदा भेज दे, ऑफिसर उहदा सन्मान कर दे, किसे दूजे अफसर ने भेजे है भाई? साईं मियां अमीर जी ने अपने हथी श्री हरिमंदर साहब जी की नींह रखी है, पातशाह ने मान दिता है। अज जदों वजीर खान नूं कल्लिया हजूर बड़े अदब नाल कहिंदे दसो की रोग है? वह कहिंदा जी मेरे पेट विच फोड़ है, जलोदर दा रोग है, ठीक नहीं हो रहा। श्री गुरु अर्जन देव महाराज बोले कहिंदे ओ जिहड़ा बजुर्ग तुरिया आउंदा ना चिट्टे दाड़े वाला, उहदे हत्थ विच टोकरी है, हरिमंदर साहब की सेवा चलती है, वह मिट्टी की टोकरी सुट के आउंदा, उस बजुर्ग नूं जाके कहो वह तुहाडा रोग ठीक करेगा। वजीर खान दे मन च आया वी शायद वह बजुर्ग कोई बैद बूद रखिया होना, गुरु अर्जन देव महाराज ने दवाई दारू दिंदा होना है, बुजुर्ग है गुरु अर्जन देव महाराज ने कोई बैद रखिया होना है, दवाई दारू दिंदा होना है। दो दिन नाल अहलकार ने वजीर खान उधर नूं तुर पिया ते जाके हथ जोड़ के बाबा बुढ़ा साहब के मूहरे खड़ गया, कहना जी गुरु अर्जन देव महाराज जी ने तुहाडे वल कल्लिया है, मैनू रोग है जलोदर दा, ठीक कर दिओ, मैनू दवाई चाहीदी है, मैनू जलोदर दा रोग है, ठीक कर दिओ, गुरु अर्जन देव महाराज ने तुहाडे कोल कल्लिया है। बाबा बुढ़ा साहब ने हाथ में टोकरी पकड़ी है, जोर नाल टोकरी मार के धक्का दे के परे करके कहा ओए दाते नूं छड के मंगते कोल की लेना है, देण वाला तो दाता बैठा है, दाते नूं छड के मंगते कोल की लेना है। धक्का मार के टोकरी ना बाबा बुढ़ा साहब अगे लंघ गए, पेट का फोड़ा ए हाथ रख के पेट फड़िया, दर्द हुंदे पीड़ा नाल तड़फदा वजीर खान फिर गुरु अर्जन देव महाराज कोल आया। बाबा बुढ़ा साहब की वेर को आके कहना महाराज वह बजुर्ग तो बहुत गुस्से विच है, उन्हें तो टोकरी जोर नाल मार के कहा दाते कोलों मंग जाके, मंगते कोल की लेना है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज हस पे, कहने वजीर खां बाबे बुढ़े ने तेनू टोकरी मार के परां करके कहा दाते कोल जा, मंगते कोल की लेना है, जेड़े हाथ नाल बाबे बुढ़े ने टोकरी मार दिती है हुण तेरा रोग हट गया है। बाबे बुढ़े दे हाथ एवें नहीं, ओदे हत्थां च बरकत भरी है, ओदे कदमां विच करंती है, ओदे बोलां विच करामात है, ओदे हत्थां विच बरकत है, जेड़े हाथ नाल टोकरी मारी हुण रोग हट गया है। साध संगत जपन वालियां दे हत्थां विच बरकत है, कदमां च क्रांति है, बोलां विच बरकत है। ताइयों गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा सिखो बाबे बुढ़े वर्गा कोई गुरसिख बंदगी वाला मिल जाए चरण धूड़ मंगया करो, क्यों एहो जे जपन वालियां दी चरण धूड़ नाल ही पाप उतर जांदे ने, एहो जे जपन वालियां दी चरण धूड़ी नाल ही पापियां दा उद्धार हो जांदा है। यह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी का फरमान है। आप पंक्ति पढ़ो गुरसिखी भाणा मन्या गुरपूरा पार लंघाए, गुरसिखां की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाहे।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੱਠੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੱਠੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਵਾਈ। ਕਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਇਆ ਹੈ, ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨੀ ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਲਰ ਨੀ ਕੋਈ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਲਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਐ ਲੈਂਟਰ ਟਿਕ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਲਰ ਤੋਂ ਜਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਏਡਾ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਪਿੱਲਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਪਿੱਲਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੈਡਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਬੇ। ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਜੀਟੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਰਜੀਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

गोबिंदे मुकंदे उदारे पारे हरियंग करियंग नरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे।

है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गावन है के सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता है के सर्वत्र घंता के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सोख के सर्वत्र पोख के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र मान सदैव प्रधान के सर्वत्र जाप के सर्वत्र ताप के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं काली में के परमंग फही में के आकल आला में के साहब कला में के हुसन वजू है तम मल रुजू है हमे सुल सलाम सलीख तम दाम गनी मुल सकास्त गरीब मुल प्रस्त

रूपता स्वरूप त्रमुक्ता विभूत भर भूत प्रभा है सुजूत सुदा सदा स्वरूप भेदी अनूप समस्त पराज सदा सर्वसाज समस्त सलाम सदैव लकाम दरबाद स्वरूप है आगाध है अनूप है ओंगाद रूप नाद स्वरूप नंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभर्गम त्रिभादे अगंज अगाध सुभंग सर्वभाग्य सो सर्वानुराग त्रिभूत स्वरूप है अछेज है छूत है कि नरकंग प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभूत।

नमः सूर्य सूर्य नमः चंद्र चंद्र नमः राज राजे नमः इंद्र इंद्र नमः अंधकारे नमः तेज तेजे नमः बृंद बृंदे नमः बीज बीजे नमः राज संत

नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सोतर्मंग बेपूते सदा साचदा नंद सतरंग प्रणासी करिमल को निंदा समस्तल निवासी अजायब बिपूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करिमल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र

पौन आहार जति जत तहर सब सब चार हजार क देख है श्री भगवान पाए श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है।

आयो सात कहूं सब सुन लिहो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो काहु लै पाहन पूज तरै काहु लै पाहन पूज

आई दुष्ट दोख तेलेह बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता केल में सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को।

0: विस्मात्नाद विस्मात् वेद विस्मात् जीव विस्मात् भेद विस्मात् रूप विस्मात् रंग विस्मात् नांगे फिर हैं जंत विस्मात् पौण विस्मात् पानी विस्मात् अग्नि के डेविडाणी विस्मात् धरती विस्मात् खाणी विस्मात् साथ लगे प्राणी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड से।

सो सेवक सेवा करे सो हुक्म नाय सी हुक्म ने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाई सी खसमे पावे सो करे मन चुंदिया सो फल पाई सी तां धर के पैंदा जाय।

जिते दाने अन्न के जिया बाजना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए, सूत क्यों कर रखी है सूत।

आपे ही करना कि अगला पी ते तारी है। देखे किता अपना दर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है। जिसके जी पुराने कुछ साहिब मनो विसारी है।

जिसे सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए, जित कीता पाइए अपना सकाल बुरी क्यों घालिए, मंदा मूल ना कीची दे लमी नदर निहालिए, ज्यों साहिब नाल नहारिए ते वेहा पासा ढालिए, किशलाहे उपर घालिए।

मित्रंत अयंत सतरंद्रनंत अनिक माया विस्तीरने आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम भ्या

0: नानक हर हर हरे।
1: मनुख दिया बुनियादी मूल कमजोरिया विचों प्रबल कमजोरी अहंकार, अहं, मैं हां, मैं हां, मैं हां। जिन्ने चिर तक ये मैं रहती है, ये अहं भाव रहता है, उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहता है, चलता रहता है। ये जन्म ते मरण का मूल है, ये जन्म ते मरण का कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, होमे एहा जात है, होमे कर्म कमाए, होमे एही बंदना फिर फिर जौने पाए। होमे दा स्वभाव है, मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशक, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म सामाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनैतिक ने, अहं मूल है, अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म में। और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है, और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण, इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत लंबी यात्रा विच पा देता है, बहुत लंबे गेट विच पा देता है। धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रमाण कर रहे ने, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पाप आत्मा अहंकार, तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख वख जीवां विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं। जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है, और पतंगे विच दृष्टि रोग, मच्छी विच रसना दा रोग, और इसी तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग। होमे रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गहे कुरंगा, हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग। जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ये रोग बंधन दा कारण बनदे ने, ये रोग दुख दा कारण बनदे ने, और मनुख दे सारे दुखां दा मूल कारण अहं अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करदा है, किधरे सूक्ष्म रूप, किधरे पदार्थां दा अहंकार, किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा दे प्रति कीते गए ने उसका अहंकार, किधरे इस जीवन का अहंकार, किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है, जोवन जवानी स्वप्न दे आधार से खड़ा होंदा है, और शक्ति सत्ता ताकत इसके आधार पे खड़ा होता है। जो बन धन प्रभुता के मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल की तरह घूम रहा है। जो बन दी मस्ती रिच, धन दी मस्ती रिच और सत्ता दी मस्ती रिच। धन जेब रिच होवे या मन दी सोचनी रिच होवे, जो बनवंत होवे या जो बन दी चाह मन रिच होवे, सताधारी होवे या सता का चिंतन अंदर चलता होवे, दोहां हालत पागल हो जाता है। सता पागल कर देती है, सता का चिंतन भी पगला देता है। जो बन पागल पंदी सीमा तक ले जाता है, पर जो बन का चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब देच है, धन घर देच है या धन सोचां देच है, विचारां देच है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तभी पातशाह फरमान कर रहे हैं, जोबन धन प्रभुता कै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है, दूसरे नूं तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। हर एक नूं छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नूं महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, जिस दी महफिल देख खुर्शीद के सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिया रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुद रा बजुर्ग दीनम शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल विच तू अपने आप नूं आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हाँ, जिथे सूरज भी एक निक्के जिहा जर्रे वर्गा है, इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू का महान शायर इसनों एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म, मैंने ये दर्स पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान, इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है और कई गुणा उस तो वद अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल विच नहीं और ये अहंकार मूर्खता से खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, ज्ञान भी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं,
0: हम बड़े कहु कुनीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ननासी कह रविदास सभे नहीं समझसे भूल परे जैसे बोरे।
1: इत सारे भूल के पागल हुए फिर देने कौन, हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान, बस यही जहालत ले फिर दी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कवे नानासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहते ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होता है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होता है, क्योंकि अवगुणा के आसरे ते अहंकार नु अस्थूल रूप धारण का मौका नहीं मिलता। एक गल वखरी है कि मूर्ख गुण ना होंदया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता, उसमें इतना बोझल नहीं करता। एक गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन, इक ना नाद ना बेद। इकद नू न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत का ज्ञान, गे रस रस कस ना जानन, इक ना सुरत ना सिद्ध, अकल सिर अखर का भयो ना लहन। अक्षर का कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा, संगीत का कोई बोध नहीं, किसी धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन, असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी फिर देने। पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार, प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंदा है, और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप देच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहंदे ने, चलत कत टेढ़े टेढ़े, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता। अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावा, अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते आवन, सब मैनू ही देखन। चलत कत टेडे टेडे अस्त चरम बिस्टा के मुंडे दुर्गंध ही के बेडे। तू है कि हड्डियां हड्डियां देते चढ़े होया मांस, मांस देते चढ़ी हुई चर्बी और चर्बी देते लिपटी हुई खलड़ी। और किया तू हड्डियां का मान, जोबन जवानी का मान, हड्डियां का मान, मांस का मान, मिंज का मान और खलड़ी का मान। इस तो अलावा और है कि एक आया तो इतनी नापाक है कोई भी पवित्र चीज इस नल छू जाए मैली हो जाती। और इस काया का अहंकार धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रमाण कर देने कर्पूर बहुत सुगंधा परस मानक देहं मलिनं मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञा नड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां फुल्ला जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदे आ स्पर्श करदे आ मैलियां हो जांदियां ने। मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञा नड़ो। है कि दुर्गंध खून मिंड मांस कलड़ी अज्ञानी एवं तन का अहंकार करता है। जो बंदा अहंकार करता है फिर धन का अहंकार धनवंता होए क्या को गर्वे जा सब किस तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने धन कितने उस दे वसाहिल नाली सब कुछ प्राप्त होता है। और सब तो वड्डा वसीला है ए तन और तन उसकी देन है। ये दिमाग उसकी देन है और ये तन ते मन दे आखरे ते तू धन कट्ठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है वसीला ते परमात्मा है। पर धन का अहंकार सता प्रभुता इसका अहंकार अगां चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा का सिंघासन चाहिए। दान का अहंकार ज्ञान का अहंकार सेवा का अहंकार बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठने लिए बनाई है बनाई जाता है बनाई जाता है बनाई जाता है। और गुणा के आसरे से बैठ के एक प्रसन्न बड़ा आता है क्योंकि जगत तो जस मिलता है जगत तो माण मिलता है। वो माण इस दे अहंकार नू होर वधांदा है होर वधांदा है। देखने विच आया धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है फिर धन का त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है। हुण त्याग का अहंकार सता कोल है सता का अहंकार सता का त्याग कर देता है। हुण त्याग का अहंकार ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। पहले जो कोल है उसका अहंकार फिर जो कोल है उसका त्याग किया है उस त्याग का अहंकार अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है। और अहंकार तो बचना औखा जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नूं बिठाने लई बनाने अहंकार बैठ जाता है। दान का सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी भगवान आके बैठे निरंकार आके बैठे अहंकार आके बैठ जाता। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे रही, रसना दे नाल जप दे रही, आरंभ कीता ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नू दूसरे तुच्छ प्रतीत आते ने, अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचदा है उदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार, दावा कीता सी हरनाथ कुछ ने मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा, दावा कीता सी नमरूद ने मैं हाँ खुदा, कौन होंदा खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नू भी मनन नू तैयार नहीं, इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर, और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं, सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाने की कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दी निगाहों का मरकज बन जावा, केंद्र बन जावा, हर एक की निगाह मेरे से टिक है, और हर एक का माण मैं हो जावा, मेरे से माण करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दी है। इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है तू है तू है तू है तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां, एक जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है तू है तू है, एक जन्म मरण नू मिटा के प्रभु का रूप बना देती है, बूंद सागर विच लीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते ने तू तू करता तू भया मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। तू है तू है तू है, इस वृत्ति ने इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछानी। तू है तू है तू है, इसने भगवान का रूप बना देता। मैं हां मैं हां मैं हां, ये शैतान का रूप बना देता। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है, भगवान का रूप है जिसके रोम रोम विच जिदियां सारिया क्रियावां विच भगवती प्रदर्शित भगवती नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं, ते तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज की बाणी का फरमान, गुफाओं में नावे नाल विरोध है, दोए न वसे एक ठाए। मैं ते तू दोवे कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां मैं हां, उदी सारी भज दौड़, उदी सारी किरिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू हासिल है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। उठे मैं भी कोई चिंगारी नहीं रहती, जिस विच गुण भस्म हो जाते हैं, बस तू ही तू ही तू ही। एक आलम का कहना है, अज राह चनार अज राह चोनार, कि सलामत न कुनत इस ढंग नाल चल रस्ते देच, कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकर के ना चल। बा खलक चुना जी के कयामत न कुनद, खलकत देच इस ढंग नाल रह, कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होगे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश न खुआनद और इमामद न कुनद, कि किधरे इबादत करनु तेरा जी करे, तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना हो कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए, और नमाज पढ़ने आ मस्जिद दे छी तो कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा, मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरां दे छी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने, कि प्रधान ते परमात्मा है, या फिर जिसका मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभमान, जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया है, मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसनु मखलूक दे कदमा दे भी जो है थां ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठण दी कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही हुंदे ने। सारी राजनीति सारी सता अहंकार आश्रित है, और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठता है, कई दफा सिर हिल जाने ने ये थले गिरदा है। इस वास्ते कहिंदे ना, गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगां दे सिर झुकाना चाहता है, एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जाता है, अहंकारी शर्मसार होके रह जाता है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नु तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है, ये धार्मिक साधना नु भी अपना सिंघासन बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने, आप बैठ जाता है,

सारी धार्मिक साधना हाथी का इशनान बन के रह जाती है। सारे धर्म नो अहंकार अधर्म विच बदल के रख देंदा है और इस तरह अहंकार तो पैदा ए अधर्म जन्म ते मरण का कारण बनता है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पापात्मा अहंकार तू जन्म ते मरण का मूल है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा नितरं तजन्त सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्थिरने। यह अहंकार तेनु दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने की तेनु जाच नहीं। अहंकारी के मुंह ना निकलता है, अहंकारी हां नहीं कर सकता। जब सारा माहौल ही ऐसा होए और हां कहने की सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़ना भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होए उतने ही जबान पे आ जाता है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां विच जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करदा है, ना करके दसना चाहुंदा है मैं तैनूं रोक सकदा, मैं तेरे कम नूं रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच कि भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है, ना ना ना, हां कहना ही भुल गया है। हां कहने विच इन्हों अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दिती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला गई है, ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बढ़ती है।

दूरों देख इस संत ने स्वागत किया है और सत्कार मान नाल बिठाया है। रस्मी गुफ्तगू तो बाद जो दीक्षा तो भोजन आया सी वो छकाया है। रात बड़े सोहने ढंग नाल प्रभु चर्चा करने बतीत हुई। सवेरे इस बैरागी साधु ने कोई तीन घरां दे जाना है नाल दे पिंड। उन्होंने अपने घरां दे चरण पाण लई बुलाया है। ये बैरागी साधु आए हुए मेहमान मित्र नूं कहिंदा है वी इत्थे कल्लियां बैठे हां तुसी तंग हो जाओगे, आओ मेरे नाल चलो। मैं तीन घरां विच जाना है, तुसी मेरे नाल चलो, फिर वापस आ जांदे हां। इस बैरागी साधु ने वो जो राजे ने कीमती चोला दिता सी मोतियां नाल जड़त बड़ा खूबसूरत वो कट के दिता और आखे ए पा लो कस्बे ते चले हां तुसी पा लो। वो साधु कुछ बेनियाज ये मेहमान साधु और ये मित्र साधु जो आया है रमजी मनुख हरक सोग तो उच्चा मनुख पहन लिया उसने वो चोला कीमती चोला। जैसे दोवें कस्बे के अंदर दाखिल होते हैं सारियां दी निगाह उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते। दुखी हो गया है बैरागी साधु है, कल तक मैं जब इस कस्बे दे आउंदा सी सारियां दी निगाह मेरे ते, अज ये निगाह फिर गई ने, अज ते मेरे मित्र ते चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है ये तो मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है, सारे इसनों पे वेखदे ने। खैर जिस घर विच जाना सी गए, आओ भगत होई सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालिया ने सुभावक पूछया उस बैरागी साधु तो ये जो नाल आए ने ये कौन ने, क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनू वेख रहे ने। सोना चोला पहने होया मुखड़े ते शांति झलकदी है, निर्माणता बिखरदी है, रहस बिस्माद अखां दे विच है, तो सारे घर वाले उस तो प्रभावित ने पुछदे ने संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने। दुख तो के कहिंदा मेरे मित्र ने कल आए सन, मेरे बचपन के दोस्त ने साधु ने साधना करदे ने बड़े ज्ञानी ने जपीश्वर ने कपीश्वर ने, पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा लेकिन अहंकार उबल पिया, बुलवा दिता अहंकार ने मेरा है चोला मेरा है। खैर जब उस घर तो रुखसत होए उस मेहमान साधु ने कहा मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा कीता, चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे, कोई इस तरह तारुफ कराई दा। खैर माफी मंगण लग पिया, कहन लगा नहीं अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गए तुसी बुरा ना मनाओ बुरा ना मनाओ, दूसरे घर गए।
दूसरे घर वाले की भी निगाह इस साधु पे अखा विच रमज है, बिस्मात है, चेहरे से शांति है। और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं, इतना कीमती चोला, इतना सुंदर चोला, तो दूसरे घर वाले ने भी यही पूछे, संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने, ये कौन ने? तो एकदम बोल पे, मेरे बचपन के दोस्त ने, बाल सखा ने और साधु ने, तपस्या करने ने, ज्ञानी ने, रह गई इस चोले की गल, ये चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इस दे उची वो कह गया है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खैर उस घर तो जो निकले ये बैरागी साधु फिर माफी मंगदा है, मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिदा सी, पर निकल गई है गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कहांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत हुई, बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखा नु प्रभावित कर रहे है, नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसे साधु नु देख रहे हैं। सवाल पूछ रहे है, संत जी ये नाल कौन आए ने, ये केड़े संत ने? तो हुण तारुफ करांदा है, मेरे बाल सखा मित्र ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने, पर रह गई इन्हां कपड़ियां दी गल, इस चोले दी, मैं इस दी गल नहीं करने, ना गल करके भी कर गया। जब उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अग्गे रख दिता, आखिया तीन दफा तू नंगा कीता है, एले अपना चोला, हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना, तीन दफा तू उतरवाया, तीन दफा तू लगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र का भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता, अहंकारी अपने गुरु की महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो मित्र नु छुपाएगा, मां बाप गुणवान ने तो उन्होंने पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनु भी हंकारी छुपाण की कोशिश करेगा, पिछे सुटेगा। महाराज की बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरियारी, ये बड़े बुरे पुरुष होंगे ने हंकारी, गुरु को भी छुपाते ने, क्यों? फिर मेरी मैं, मेरा वडपना फिर कित्थे? ते मित्र नु छुपाते ने, पुत्र नु छुपाते ने, अगर गुणवान है मां बाप नु पिछे सुटदे ने, सिर्फ अपने आप नु ही अगे करना इन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश ए भी होंदी है, रब नु भी पिछे सुटीए, परमात्मा नु भी पिछे सुटीए। हर नाकिस ने पिछे सुटन दी कोशिश कीती सी, नमरूद ने कह दिता सी कौन होंदा है खुदा, मैं खुद खुदा हां। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसे नु भी नहीं मन सकता, अहंकार जीवदा मैं आश्रित तू ते बिल्कुल भूल जांदा है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नजम लिखी है, बकरे दे बोल नु अग्गे करके, ते बकरे दा बोल है मैं इसे नु आधार बना के
इस शायर ने बड़ी सुंदर कल्पना की थी। फख

के गर्दन पर छुरी कसा बने। कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर देता, सिर वज देता। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकत मैं।

आंद्रा रह गईया, सुरदतियां गईया, बाकी तो सब कुछ कम आ गया, खल कम आ गई, मांस कम आ गया, हड्डियां भी पिस गईया, कम विच वर्तियां, केवल आंद्रा बच गईया। ये नदाफ चुक के ले गया जो रूई पिंज देने धुनकी दे नाल, और धुनकी जिहड़ी तंग लाई जांदी है वो बकरे दी आंत आउंदी है, अंदर आउंदी है। ले गया नदाफ से धुनकी बनाने के लिए, ये आंदर ही रह गई, रह गई ताते फिकत मैं मनाने के लिए। ले गया नदाफ से धुन की बनाने के लिए, जर्व की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी। उस तांत देते हो, उस आंत देते नदाफ जोरदार सोटा मारदा है, बस उस नाली रूई पिंजी जांदी है। जर्ब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी, मैं के बदले तू ही तू की बस सदा आने लगी। हुन उस आंत बिचो सोटे की जर्ब नाल निकल रहा है तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। खुद इतनी कुर्बानी करे, साधना करे कि साधना विच लीन मनुखां दी कदमां नू खाक ते अपने मस्तक नू रगड़े, श्वास श्वास वाहिगुरू वाहिगुरू जपे, ताई ये मैं तुम विच बदल दिए, जीवन धन धन हो जांदा है, महान हो जांदा है। अहंकारी उस तक अपनी करेगा, निंदा दूसरे दी करेगा। अगर दूसरा वड्डा है तो अहंकारी लाजमी निंदा करेगा, अहंकारी निंदक हो ही जाएगा। उसे प्रसन्न होता है अपनी उपमा सुन के, उपमा होण लग पई है दूजियां दी, तीसरे दी, मित्र दी, तो हुण इस कोल होंदी है निंदा। निंदा दा मतलब की है? गल नूं छुटियाना। और अक्सर मनुख उसे दी ही निंदा करदा है जो किसे गल विच उस नालों अग्गे होवे, गुण विच, कला विच, ज्ञान विच, शील संजम विच, या फिर प्रभु दी बंदगी विच, या संसारी तल ते ले लो सता विच, धन विच, स्वपन विच, किसी भी पक्ष तों जो अग्गे है, अहंकारी उसकी तारीफ नहीं कर सकता। अहंकारी सच नूं सच नहीं कहेगा, अहंकारी निंदा करेगा। और अहंकारी बड़ा प्रबल निंदक होता है, छुपाने की कोशिश करता है, घटाने की कोशिश करता है। भगत नामदेव जी उन्हें भी तपस्या इतनी इतनी, परमात्मा उन्हें भी सन्मुख होया है, प्रभु सामने होया है, लेकिन हंकारी ब्राह्मणा ने मार मार के मंदिर चो कढ़िया है और मंदिर दे पिछवाड़े बिठा देता है, मारे है कढ़िया है। ये बेचारा मंदिर दे पिछे बैठ गया। पहले थे मूर्ति दे सन्मुख सी, मूर्ति नामदेव दे सन्मुख सी, पर हुण पिछे। पातशाह दी बाणी कहंदी है अहंकारियां निंदकां पिछ गए, नामदेव मुख लाया,
अहंकारी निंदक होता है और निंदक से अहंकारी की तरफ परमात्मा की हमेशा पिट होती है। जो गुणा की सिफ तो सलाह करता है वो तो परमात्मा की सिफ तो सलाह करता है। गुण किसी मनुख दे भी प्रगट होए ने तो गुण तो सारे परमात्मा दे ने। गुणा की तारीफ परमात्मा की तारीफ है पर वो तो निंदा करता है, गुणा की निंदा करता है क्योंकि अहंकारी है तो परमात्मा की पिट हो जाती उसकी तरफ। और जिस मनुख की तरफ परमात्मा की पिट हो गई है सब की पिट हो जाती है। और अहंकारी बहुत दुखां दे दलदल दे जाके फसदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान करते ने, आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे। ऐ अहंकार तेरे करके ते जीव जमदे ने मरदे ने आंदे ने जांदे ने दुख भोगदे ने सुख भोगदे ने थक जांदे ने टुट जांदे ने। ऐ अहंकार तू ते तोड़ के रख देना कईयां नूं ब्रह्म।

कोई बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उसके हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान विच कोई रमण कर रहा हो, भ्रमण कर रहा हो, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते हैं और अहंकारी कल्ला रह जाता है और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान विच भयानक जंगल विच मनुख तनहा रह गया हो। असाध रोग है, किसी वैद्य को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक की अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनान के हर हर हरे। है देव, है हकीम, कौन परमात्मा, तेरी दवाई है उसके कोल, बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लभनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हूं जी किधरे अंदरों निकले तू ये औषधि होगी। मैं ये रोग हो गया, ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने। इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। ईग तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ईग मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है, और गुरु अर्जन देव जी महाराज का ये फरमान ये वाक प्रेरणा दे रहा है। ये रोग अंदर है तो वैद्य भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि का सेवन कर। कह सब कुछ तो ही है, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु तू ही है। जितना कहता जाएगा उतना मैं मिटता जाएगा, और जैसे अहंकार पूर्ण तौर पे मिटेगा वैसे निरंकार पूर्ण तौर पे प्रकट हो जाएगा, और तू निरंकार का रूप हो जाएगा, ईश्वर का रूप हो जाएगा। गुरु कृपा जाए नरको कीनी, ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। इस तरह तू प्रभु का रूप हो जाए।